0: मैं पाचो
1: इटीवनो और रेडियो यम ये करे वेर क्वारो
0: अलीशान विजुगो
1: मार मैं पाचो इटीवनो और रेडियो